सतगुर होए दयाल तसरदा पूरीए, सतगुर होए दयाल न कबहूँ झूरीए, सतगुर होए दयाल त दुख ना जानिए, सतगुर होए दयाल त हर रंग माणिए। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों को माणते हुए जुड़ चुके जी एक बार फिर एक खूबसूरत शाम खूबसूरत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम रेडियो उड़ान लैके जिंदगी जिंदाबाद ते चढ़दी कला की पहचान रेडियो उड़ान प्रभ संत दे नाल।

0: साह वर्गे आखरी साह तक याद रहेगी तू।
1: क्या बात है जी,
2: मेहरबानी जी,
1: बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तुसी अज साडे स्टूडियो नूं भाग लाए मास्टर सलीम जी, 24 जुलाई नूं मिसीसागा कन्वेंशन सेंटर दे विच लास्ट होका दे रहे हैं, बहुत लिमिटेड जिहा सीट आ। तुसी इस आवाज़ नूं, इस चंगे संगीत नूं, साफ सुथरे म्यूजिक दे जे तुसी आशिक हो, एक ऐसी आवाज़ दे तुसी आशिक हो कि जिहड़ी दिलां दे विच घर करे, तुसी 24 जुलाई नूं मिसीसागा कन्वेंशन सेंटर दे विच पहुंचना आ। लास्ट सद्दा एक बार रोहन नंबर ते एक बार लास्ट सद्दा दे दो।
3: ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਸੋ 24 ਜੁਲਾਈ 2026 ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ ਪਲੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਿਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ,
2: ਇਹ ਮਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
1: ਸੋ 900 ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਹਨ ਆਪਣਾ ਦੇ ਦਿਓ,
2: 6477839873।

0: IQ, Fashion IQ, Latest Design, Trending Outfits,
1: लेडीज सूट, लहंगे, गरारे, शरारे,
0: कुर्ते, पजामे, शेरवानिया, कोट पैंट, ब्लेजर अते किड्स फैशन,
1: विंटेज ते सफारी लगेज सेट्स दी वड्डी कलेक्शन, थीम वेडिंग ले टॉप टेलर टीम भी अवेलेबल, फैशन आई क्यू, फैशन आई क्यू, हुने कॉल करो 9054533225 या गूगल ते सर्च करो फैशन आई क्यू, स्पेशल गिफ्ट ले रेडियो उड़ान दा रेफरेंस देना ना भूलियो।

0: really good mood today. What is the reason?
1: This is the effect of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: जे तुसी भी करना चाहते हो अपना खुद का रेडियो प्रोग्राम तो आज ही सानू कॉल करो 647-504-1557।
4: डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नूं मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहणगे।
5: S&S Lawyers को इन्हां सारे सवालां दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानन लई या सलाह लैण लई अज ही S&S Lawyers नूं कॉल करो 416-655-2000।
3: टैक्स स्पिरिट, हजे तक भी तुसी अगर अपने सिक्योरिटी कैमरे नहीं लगवाए ता बिजनेस या रेजिडेंशियल अपने घरां लई सिक्योरिटी कैमरे रिकॉर्डिंग अते दुनिया भर दे विच किते भी कैमरे चैक करो अपने फोन दे राही। टैक्स स्पिरिट 905-621-4100। तुसी होम ऑटोमेशन कोई भी करवानी है, तुसी अगर घरे अपना होम थिएटर होम सिनेमा तैयार करवाना, वेरी प्रोफेशनल टीम। टैक्स स्पिरिट 905-621-4100 905-621-4100 ते फोन जरूर करो। SS Lawn Care ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਚੋਇਸ। ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਘਾਹ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੋਡ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੀਜ਼ਨਲ ਗ੍ਰਾਸ ਕਟਿੰਗ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਵੀਡ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਫਲਾਵਰ ਬੈਡ ਬਣਵਾਓ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕੰਮ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 437-655-1984
6: Get ready! GTA, are you-

टीम फोर एंटरटेनमेंट पेश कर देने पंजाबी विरसा 2026 टोरंटो शो सैटरडे 25 जुलाई नो थिएटर एट ग्रेट कैनेडियन टोरंटो।

0: sun, jump our sun, blue our sun, happy sun, nandit hoshi be sun, bole sone hal, sasya kal.
1: मम्मी पापा दे वीजे ली सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है ते पंटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है शमी पठल होरा ने तोड़ा खर्चा छोटियां इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दियां बेस्ट डील ले याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम 416-917-7763 416-917-7763Life insurance, visitor insurance, super visa insurance, critical illness, disability insurance, RESP, travel insurance, convert expensive mortgage insurance to term insurance.

0: Imagine having a Muskoka getaway that works for you, even when you're not there. Discover a rare opportunity at an exclusive open house in Huntsville, where peaceful surroundings, year-round enjoyment, and endless outdoor adventures meet proven investment potential. This exceptional property offers 3 bedrooms, modern finishes, and lake access nearby. Curious to learn more? Visit the open house Saturday, July 25th from 1 till 3, or contact Jay Gundam, RE/MAX Gold Realty, Inc. at 416-265-2222.
1: कमाल दा कैसी यार यकीन ही नहीं होता
2: तेनू इधर तो यकीन नहीं होता तू ए सुन सेव ऑन एनर्जी वाले फ्री इलेक्ट्रिक हीट पंप ते रहने जे तुहाडे घर विच इलेक्ट्रिक जा ऑयल हीटिंग है
1: इस गल ते मेनू पूरा यकीन है ओते इंस्टॉलेशन दा 100% खर्चा भी आप देंदे ने ते जे तुहाडे घर विच ऑयल हीटिंग है ते ओ ऑयल टैंक भी फ्री च बाहर कर देंगे नाले हीट पंप तुहाडे हीटिंग बिल्स 50% तक घटा सकदे ने
2: ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ
1: ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ
2: ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਨਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ
1: save on energy.ca/eap

0: ਲੋ ਜੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ.
1: Imagine having a Muskoka getaway that works for you, even when you're not there. Discover a rare opportunity at an exclusive open house in Huntsville, where peaceful surroundings, year-round enjoyment, and endless outdoor adventures meet proven investment potential. This exceptional property offers 3 bedrooms, modern finishes, and lake access nearby. Curious to learn more? Visit the open house Saturday, July 25th from 1 till 3, or contact Jay Gundam, Remax Gold Realty, Inc. at 416-265-2222.
2: कमाल का कैच था यार, यकीन ही नहीं आ रहा.
3: तुम्हें इस पर यकीन नहीं आ रहा तो ये सुनो, सेव ऑन एनर्जी वाले मुफ्त इलेक्ट्रिक हीट पंप दे रहे हैं अगर तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक या ऑयल हीटिंग है.
2: इस बात पर मुझे पूरा यकीन है, वो तो इंस्टॉलेशन

0: 100% खर्चा भी खुद उठाते हैं। अगर तुम्हारे घर में ऑयल हीटिंग है तो वो ऑयल टैंक भी बिल्कुल मुफ्त बाहर निकाल कर देंगे और हीट पंप से तुम्हारे हीटिंग बिल्स 50% तक कम हो सकते हैं।
1: तुम्हें ये सब कैसे पता?
0: क्योंकि मैंने भी पिछले साल ये लगवाया है।
1: अच्छा, वो क्या वेबसाइट थी?
0: saveonenergy.ca/eap।
2: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: Brampton या फिर तीजी लोकेशन 9985 Macwin Drive Unit 9 Brampton Indian Fruitland ते हुन चौथी नवी लोकेशन 1465 Mayfield Road Brampton वदिया ग्रोसरी सब तो नेड़े Indian Fruitland 905-456-9900
1: एच के मूवर्स का हो साथ लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात एच के मूवर्स होम ऑफिस अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी बिग और स्मॉल वी मूव इट ऑल वी ऑल्सो शिप कार्स वी ऑल्सो डू स्टोरेज 30 years एक्सपीरियंस वी सर्व विद अ स्माइल एच के मूवर्स गिव अस अ कॉल मिस्टर हरमिंदर 416-524-6704 416-524-6704
2: हासल फ्री मूविंग के लिए एच के मूवर्स
3: कि तुसी भी अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स नो सुपर वीजा या विजिटर वीजा ते कनाडा लेके आ रहे हो ते फिर प्लैनेट इंश्योरेंस तो सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर इंश्योरेंस प्लान लेके उन्होंने प्रॉपरली प्रोटेक्शन दे साड़े अप्रूवल फास्ट ने कवरेज तुहाडी नीड के मुताबिक है ते कॉम्प्रीहेंसिव प्लान है जिहड़ा ए सारा कुछ तुहानू मिल सकता है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस ते तुसी मैनू कॉल करो एदे लई नंबर है 416-524-3535 416-524-3535 विदेश आपरा फ्रॉम प्लैनेट इंश्योरेंस
4: डॉक्टर कुमार लगे हुए नशियां तो मुक्ति दवाने वास्ते शराब अफीम पोस्त डोडियां दे नशियां तो दूर कर देंदे हैं डॉक्टर कुमार लेडीज दे मर्दां दे गुप्त रोगों का इलाज डॉक्टर कुमार बुजुर्गों दे मोढे गोडे दुखदे हैं भाई डॉक्टर कुमार हर्बल वैगरा भी तुहानू वेचदे हैं डॉक्टर कुमार हर तरह के इलाज वास्ते डॉक्टर कुमार 416-425-0138 ग्रेटर पंजाब प्लाजा माल्टन गुरु घर दे कोल डॉक्टर कुमार 416-425-0138 ते कॉल कर सकते हो
0: इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश खरीदिए जीटीए में कहीं और ना मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियां इंडिया सजावट एंड पूजा हट से और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट 31 मेलनी ड्राइव यूनिट 5 ब्रैम्पटन 9054586808
5: ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ

0: Brampton या फिर तीजी लोकेशन 9985 Macvin Drive Unit 9 Brampton Indian Fruitland ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 Mayfield Road Brampton वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े Indian Fruitland 905-456-9900
1: रेव सिंह कैनेडियन जंपर साडा अपना रियल्टर कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वास्ते पूरी हिस्ट्री कट के प्रॉपर्टी दी पूरी खोज करने तो बाद फिर तुहाडी प्रॉपर्टी लिस्ट कर देने रेव सिंह होम लाइफ सिल्वर सिटी दे एक्सपर्ट रियल्टर रेव सिंह दी तिखी नजर तुहाडी प्रॉपर्टी वेचण दे खरीदण विच तुहाडी हेल्प कर सकती है नवे प्रोजेक्ट दे माहिर अते इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दे एक्सपर्ट रेव सिंह नूं फोन करो 647-740-9600 647-740-9600 ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੈਲਟਰ ਰੈਵ ਸਿੰਘ

0: views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: हेलो
2: हेलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल।
1: हाँ जी कटारिया टूर एंड ट्रैवल।
2: इंडिया दी टिकटा चाहिदियां सी।
1: ओ इंडिया की तुसी जित्थों मर्जी दी टिकटा ले लो। इंडिया किथे जाना?
2: चार टिकटा दिल्ली दिया ते दो अमृतसर दिया। मिल जानगियां?
1: मिल जानगियां, बिल्कुल मिल जानगियां। दिल्ली मुंबई अमृतसर एहो ता साडी स्पेशलिटी है। बस दसो की टिकटा कदों दियां चाहिदियां ने। ते हां स्पेशल टूर पैकेजेस ते हनीमून पैकेजेस भी साडे कोल अवेलेबल ने।
2: भरोसेमंद सर्विस ते सब तो वधिया रेट्स लई इक्को इक ना कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल। बुकिंग लई अज ही कॉल करो 9056781200 9056781200 Kataria Tours and Travel
3: 32 55 80
1: 98
3: ਇਹ ਕੀ ਗਲਤ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ?
1: ਉਹ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ 32 55 80 ਤੇ 98 ਇੰਚ ਦੇ ਟੀਵੀ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਹੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਹਰ ਬ੍ਰੈਂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ। 32 ਤੋਂ 98 ਇੰਚ ਦੇ ਲੇਟੈਸਟ ਟੀਵੀ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ।
3: ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ 801 ਗੋਵੇ ਡਰਾਈਵ ਨੀਅਰ ਚਿੰਗੂਜ਼ੀ। ਕਾਲ 9054502828 905 450 2828

0: Imagine having a Muskoka getaway that works for you, even when you're not there. Discover a rare opportunity at an exclusive open house in Huntsville, where peaceful surroundings, year-round enjoyment, and endless outdoor adventures meet proven investment potential. This exceptional property offers 3 bedrooms, modern finishes, and lake access nearby. Curious to learn more? Visit the open house Saturday, July 25th from 1 till 3, or contact Jay Gundam, Remax Gold Realty, Inc. at 416-265-2222.
1: की तो हानू इलेक्ट्रिशियन दी लोड है सर हाई रिस्क इलेक्ट्रिकल ते कॉल करो हाई रिस्क क्यों क्योंकि साडे को लाइसेंस नहीं है ते सी इलेक्ट्रिकल परमिट नहीं लेंदे जाने कि तुसी पक्का नहीं कह सकते कि साडा काम किन्ना कु सुरक्षित जकनूनी है पर एक गल पक्की है कि जदों भी असी आवांगे असी तुहाडा टॉयलेट जरूर वरतांगे इसलिए हुणे कॉल करो असी वादा करदे हां कि तुहाडे घर नूं आग नहीं लगेगी शायद
2: अपने परिवार दी रक्षा करो सिर्फ लाइसेंस इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर ही वरतो अते यकीनी बनाओ कि ओह ईएसए परमिट हासिल करन होर जानन लई highlicense.ca ते जाओ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी अथॉरिटी वल्लों एक सुनेहा
3: This is AM 530 CHLO AM serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA and the world at am530.ca The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
4: ਜਾਪੀਆਂ ਤੱਕ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਰੇਡੀਓ। This is ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਰੇਡੀਓ।
5: ਵਤਨੂ ਰੇਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੁਖੀ ਨਿੱਜਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ

0: सेट है, चांदी की बैंगल्स और चांदी की पायल।
1: इतनी बस नहीं, जेंट्स ने चांदी के कड़े, चांदी की चेन, चांदी के ब्रेसलेट,
0: बर्तन और चांदी के किसी भी तरह का सामान लेने के लिए वन एंड ओनली सिल्वर हट
1: एंड अवनीजर इंटरसेक्शन।

0: permit, farmer, investor, या self-employed दी file, गल की immigration दी हर problem दा solution लैन लई community दे जाने पहचाने अते तजरबेकार immigration consultant Gary Virk नूं मिलो।
1: कोई case refuse हो गया या appeal ते चला गया, होवे immigration दा कोई भी मसला, हमेशा याद रखो इको ही ना अते इको ही था। CIC immigration, हुणे ही call करो 416-456-6666।
2: चलो AM 530 तो तुसी सुन रहे हो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो।
3: टुडे विच लाइव गलबात कर ली, हुणे कॉल करो 905-564-6444।
2: 905-564-6444।
3: सुनते रहो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो, चलो AM 530 तो।
4: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
5: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
4: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
5: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे, इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी। जेड़े लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
6: याद रखो मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू, 416-509-1509 और विजिट insuranceforyou.ca।
3: दोस्तों देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो नो या चलो AM 530 ते 24/7 जिन्ने भी प्रोग्राम आउंदे ने उन्हां नूं सुनण वास्ते जां देश प्रदेश नूं लाइव देखण वास्ते लॉग इन करो साडी वेबसाइट नूं www.deshpradeshradio.com या www.deshpradeshtv.com। लाइव सुनना चाहुंदे लाइव ते क्लिक कर लो, जे वाच करना चाहुंदे आ तां ओह ते क्लिक करो, जां फिर अपने IPTV बॉक्स दे उत्ते पंजाबी सैक्शन क्लिक करो, ओहदे उत्ते जाके देश प्रदेश टीवी नूं क्लिक करो, ओहते तुसीं सुन भी सकदे हो, वेख भी सकदे हो 24/7। चलो AM 530 तों तुसीं सुन रहे हो अपना हरमन प्यारा रेडियो प्रोग्राम देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो। पिछले 30 वर्षां तों तुहाडे अंग संग देश प्रदेश हुण अपने शाम दे प्रोग्राम दे विच वाधा कर चुका। पहला तुसीं सुनदे सी मंडे टू फ्राइडे 4 to 6, लेकिन हुण तुसीं सुनदे हो 3 to 6 शामी, जाने के देश प्रदेश तुहाडे लई शाम नूं 3 घंटे पेश हुंदा है, ते नाल तुसीं दुपहरे सिरड़े 1 to 4 शाम दे 4 बजे तक देश प्रदेश नाल सांझ पाउंदे हो। देश प्रदेश रेडियो प्रोग्राम दे विच कोई भी अपने काम कार दी एडवरटाइज करनी होवे तां अफोर्डेबल पैकेज लई अज ही कॉल करो ਸਮਰਾਜ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 416-457-3381, 416-457-3381, ਜਾਂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-725-2551, 416-725-2551। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ 7 days a week ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ। ਚਲੋ AM 530 ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕੋਮਲ ਟ੍ਰੈਵਲ ਐਂਡ ਟੂਰਸ। ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਬੈਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਪ ਕਰੂਜ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਆਈਲੈਂਡ ਤੇ ਹੋਲੀਡੇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੈਕੇਜ, ਤਾਂ ਕੋਮਲ ਟ੍ਰੈਵਲ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਕੋਮਲ ਟ੍ਰੈਵਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 905-248-7011, 905-239-7711। ਕੋਮਲ ਟ੍ਰੈਵਲ ਐਂਡ ਟੂਰਸ। ਸਸਤੀ ਗਰੋਸਰੀ ਔਰ ਹਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਾਮ, 7 ਸ਼ਿਖਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰੂਟ ਲੈਂਡ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦੂਰੀ ਗ੍ਰਿਲ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਿਆ ਬਣਿਆ ਹਰ ਫੂਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਾਹ ਮੀਟ ਵੀ ਔਰ ਮੈਰੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਮੀਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਓ, 45 Dusk Drive, 15 Pender Way, ਬਰੈਂਪਟਨ, 9985 ਮਕਵੀਨ ਡਰਾਈਵ ਬਰੈਂਪਟਨ, 1465 ਮੇਫੀਲਡ ਰੋਡ ਬਰੈਂਪਟਨ, 33 ਫਾਰਲੀ ਡਰਾਈਵ ਗੋਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 600 ਹੈਸਪਲਰ ਰੋਡ ਕੇਮਬ੍ਰਿਜ, ਨਵੀਂ ਖੁੱਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ 25 ਸੈਂਟਰਵੁੱਡ ਪਾਰਕਵੇ, ਕੈਨੇਡੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰਵੁੱਡ ਪਾਰਕਵੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਓ। ਹਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਔਰ ਜੀ ਸਸਤੀ ਗਰੋਸਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰੂਟ ਲੈਂਡ ਤੇ।

0: कैनेडा दे स्टडी वीजा एक्सप्रेस एंट्री कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री स्पाउसल फाइल पेरेंट्स पीआर सुपर वीजा नैनी वर्क परमिट फार्मर इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल गल की इमिग्रेशन दी हर प्रॉब्लम दा सॉल्यूशन लैन लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो।
1: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया होवे इमिग्रेशन दा कोई भी मसला हमेशा याद रखो इको ही ना अते इको ही था CIC इमिग्रेशन। हुणे ही कॉल करो 416-456-6161।
2: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
3: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
4: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो तां सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-456-3381 ते 416-457-3381 ते।
2: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउंगे। हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381।
5: ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਤੇ 24/7 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ www.deshpardesradio.com ਜਾਂ www.deshpardestv.com। ਲਾਈਵ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ IPTV ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ 24/7।

0: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
1: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
2: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-453-3381 ते 416-457-3381 ते।
0: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे। हुणे ही सिमराज सिंह सिद्धू नूं कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381।
3: कैनेडा दे स्टडी वीजा, एक्सप्रेस एंट्री, कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री, स्पाउसल फाइल, पेरेंट्स पीआर, सुपर वीजा, नैनी, वर्क परमिट, फार्मर, इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल, गल की इमिग्रेशन दी हर प्रॉब्लम दा सलूशन लैण लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो।
4: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया, होवे इमिग्रेशन दा कोई भी मसला, हमेशा याद रखो इको ही ना अते इको ही था CIC इमिग्रेशन। हुणे ही कॉल करो 416-400

चलो लोने एक बड़ा खूबसूरत गाना सुनो, वाइब दा आनंद लो। ते साडे बड़े प्यारे सज्जन हरमन साहब

यार, अमेजिंग प्रोग्राम है भजा मेरा। तो नंबर अपना 905-673-3337। तो गल्लां बातां थोड़े नाल हो रही ने। क्या गीत है, ठीक है गल यार बड़ी।